बाटा का सौदा को चौरासी आता घूमते ही मानव को छोला पाएंगे वो भजन मन पाएंगे घूमी जाने वाला ले लाचो नाराज कटी ही बात।

0: कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून साहब सुनखानी सुनसारा सुदामा की नारी करच बिन भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई बिनति कर चिंता पिदरले गुरु देवता राजा और तुम भला मान सका निदान खाली हर मन कन कहुंच ज्योति समना देव के ही सौगर मन देव चंगा कर मुदन चौधरी का हर्षित मिलाता नगर में विचार वर्तन में विचार मुठबे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बोली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जनो बाला का ओ जननो बाला का ओ जग

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैनी में थप्लो सात मेगाहर्ज़बाट पदे प्रसाद साहब आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 13 तारीख श्रावण 28 गते बिहीबार परेवा तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

राजा सहिता वायु शरी हुन गया हनुमन्त सहिता आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्की कन फेर रामचन्द्रका पासमा।